0: ถ้าพรุ่งนี้รับงานตีสี่ครึ่งเราก็ได้ตื่นประมาณตีสามเพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทำงานต้องรับงานก่อน10นาทีแต่ถ้าเรามาก่อนก็ไม่เป็นไรเราได้เช็ครถเลยชื่อนางกฤตกรยมพันธ์ไพ่อายุ43ปีชื่อเล่นชื่อพี่กฤตตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วเปลี่ยนจากกระเป๋ามาเป็นคนขับตอนทำงานได้2ปีเราชอบแบบความท้าทายอะไรเงี้ยเราชอบอย่างนั้นแหละอยู่กับถนนหนทางอะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะลองดูนะพอไปทำใบอนุญาตเสร็จปุ๊บคันนี้เขาก็พาเราออกสนามจริงออกถนนจริงกลัวไหมกลัวสิรถมันจะไหลไปโดนข้างหลังเปล่าอะบอกก็ไม่ต้องกลัวหรอก
1: मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती क्यों आप बचपन से ही कार दो ना उनको फिर उनको आदत लगेगी फिर उनको अच्छा लगेगा सो गाड़ियों का शौक तो है मतलब बचपन से ही है एंड आई वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती मेरा नाम दिव्या दीक्षित है सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे तो फिर पापा ने मुझे सिखाया कार सिखाई जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट वी लिव इन अ मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी तो हमें कैसे लगता था कि मतलब इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता तो सिखाने में मतलब वो वहाँ तक हमें पहुँचना है बहुत दूर है
2: giao thông ở trên Hà Nội này là rất là đông đường xá đông đúc người ta không đi xe nên là người ta gọi xe đặt xe rất là đông cô tên là Đỗ Thị Mây cô đang làm nghề xe ôm công nghệ cô ra và chồng và cùng hai con để lên đây để đi làm để cho các cháu ăn học quê thì cô chỉ cấy ruộng và chăn nuôi thì không đủ cho các cháu học lúc mới ra đây thì chồng cô thì yếu ốm nói chung là cũng không đi làm gì được chỉ đi đồng nát thu mua độ ngày thì một vài tiếng thôi và nếu như cô còn đi làm việc giúp việc theo giờ hàng ngày và phụ chú thu mua đồng nát cô bắt đầu chạy xe từ năm 2023 mình sẽ tự do và mình sẽ có thu nhập thêm cô cũng thích cái nghề lái xe này là do tự do

अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊँ तो फिर उनको डर नहीं लगेगा बिकॉज बीइंग अ गर्ल. लेकिन अगर एक जेंट्स उनको लेके जाए तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है, उनको डर लगेगा फिर.

कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह। लेडीज को मतलब लेडीज के साथ ही कंफर्टेबल होता है। या फिर उनका उनको ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं उनको ये बताऊंगी कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है तो फिर ये मुझे जज करेगी। नो आई एम नॉट देयर टू जज। इंडिया में या फिर कहीं भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए। जॉब नहीं है वो, क्योंकि आप कुछ किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो। अभी मोर देन 700 क्लाइंट्स आई हैव टॉट। जो मैंने कमाई इन 8 सालों में वो मुझे तो जॉब करके तो कभी भी नहीं मिलती।

इंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है. हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन का ना डी भी नहीं है. और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो. एनीवन कैन ड्राइव, एनीबॉडी कैन ड्राइव, मतलब लेडीज है कि मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज चलाती है, मतलब कैब ड्राइवर्स भी. अभी तो है ना ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए, आपने देखा क्या? जो उन्होंने मुझे टैग लाइन दी है ड्राइविंग क्वीन, वो भी अच्छा लगता है. एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ. कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूं.

0: ถ้าพรุ่งนี้รับงานตีสี่ครึ่งเราก็จะตื่นประมาณตีสามเพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทำงานต้องรับงานก่อน10นาทีแต่ถ้าเรามาก่อนก็ไม่เป็นไรเราได้เช็ครถเลยชื่อนางกฤตกรยมพันธ์ไพ่อายุ43ปีชื่อเล่นชื่อพี่กฤตตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วเปลี่ยนจากกระเป๋ามาเป็นคนขับตอนทำงานได้2ปีเราชอบแบบความท้าทายอะไรเงี้ยเราชอบอย่างนั้นแหละอยู่กับถนนหนทางอะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะลองดูนะพอไปทำใบอนุญาตเสร็จปุ๊บคันนี้เขาก็พาเราออกสนามจริงออกถนนจริงกลัวไหมกลัวสิรถมันจะไหลไปโดนข้างหลังเขาอ่ะผมก็ไม่ต้องกลัวหรอก
1: मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती क्यों आप बचपन से ही कार दो ना उनको फिर उनको आदत लगेगी फिर उनको अच्छा लगेगा सो गाड़ियों का शौक तो है मतलब बचपन से ही है एंड आई वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती मेरा नाम दिव्या दीक्षित है सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 इयर्स पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे तो फिर पापा ने मुझे सिखाया कार सिखाई जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट वी लिव इन अ मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी तो हमें कैसा लगता था कि मतलब इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता तो सिखाने में मतलब वो वहाँ तक हमें पहुँचना है बहुत दूर है
2: giao thông ở trên Hà Nội thì là rất là đông đường xá đông đúc người ta không đi xe nên là người ta gọi xe đặt xe rất là đông cô tên là Đỗ Thị May cô đang làm nghề xe ôm công nghệ cô ra và chồng và cùng hai con để lên đây để đi làm cho các cháu ăn học quê thì cô chỉ cấy ruộng và chăn nuôi thì không đủ cho các cháu học lúc mới ra đây thì chồng cô thì yếu ốm nói chung là cũng không đi làm gì được chỉ đi lồng nát thu mua độ ngày thì một vài tiếng thôi và nếu như cô còn đi làm việc giúp việc theo giờ hàng ngày và phụ chú thu mua đồng nát cô bắt đầu chạy xe từ năm 2023 mình sẽ tự do và mình sẽ có thu nhập thêm cô cũng thích cái nghề lái xe này là do tự do

अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊँ तो फिर उनको डर नहीं लगेगा बिकॉज बीइंग अ गर्ल. लेकिन अगर एक जेंट्स उनको लेके जाए तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है, उनको डर लगेगा फिर कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह. लेडीज को मतलब लेडीज के साथ ही कंफर्टेबल होता है. या फिर उनका उनको ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं उनको ये बताऊंगी कि मुझे इस चीज से डर लगता है तो फिर ये मुझे जज करेगी. नो आई एम नॉट देयर टू जज. इंडिया में या फिर कहीं भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए. जॉब नहीं है वो, क्योंकि आप कुछ किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो. अभी मोर देन 700 क्लाइंट्स आई हैव टॉट. जो मैंने कमाई इन 8 सालों में वो मुझे तो जॉब करके तो कभी भी नहीं मिलती.

0: इंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है. हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन का ना डीपीडी भी नहीं है. और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो. एनीवन कैन ड्राइव, एनीबॉडी कैन ड्राइव. मतलब लेडीज है कि मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज चलाती है. मतलब कैब ड्राइवर्स भी अभी तो है ना, ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए. आपने देखा क्या? जो उन्होंने मुझे टैग लाइन दी है ड्राइविंग क्वीन, वो भी अच्छा लगता है. एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ.
1: कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूं?